आगे आगे भागू मैं ये पीछे पीछे आए, कुछ ना देखे कुछ ना सोचे आंखें नीचे आए। हाय

इम्पोर्टेड आशिक हूँ बट यू माई लव क्या जाने, लंदन से अमरीका तक मेरे कितने दीवाने, आई कम इंडिया फॉर यू डार्लिंग, तू माने या न माने, और डी

0: प्यार का ड्यूएट गाते गाते जब हीरो हीरोइन ऐसे लॉन्ग शॉट में चलने लगे तो समझ लीजिए लव स्टोरी खत्म, दी एंड, और जिंदगी का पहला चैप्टर शुरू।
1: यो हो रेडियो टाइगर 96.2 मेगाहर्ट्ज। रेडियो टाइगर स्टूडियो टाइम। यति बेला रात्रिको 9 बजेको छ।
2: हवस् त, एकिन्जेल रेडियो टाइगर सुनेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। आजलाई हाम्रो नियमित प्रसारण यति नै। तपाईँको मिठो निन्द्राको कामना गर्दै हामी पनि विदा माग्छौ। शुभरात्री।